0: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय श्री देवेश्वर महादेव की जय स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर पंहा स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।

0: भगवान की जय। श्री श्रीदेव पुरी समहदेव की जय।
1: ओम बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय।

श्री दीप नारायण भगवान की। देवादिदेव देवपुरी श्या महादेव की। सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। अलखपुरी जी महादेव की। सत्य सनातन धर्म की।

होली श्री दीपनारायण भगवान की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। विश्व गुरु श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर योगिराज परमहंस श्री स्वामी माहेश्वरानंद

0: की जय।
1: सतगुरु स्वामी माधवानंद भगवान की
0: जय।
1: सत्य सनातन धर्म की
0: जय।
1: सब ऋषि मुनि महात्माओं की
0: जय।
1: माता पिता गुरुदेव

की जय। हिंदू धर्म समरच स्वयं माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर पारमहंसी स्वयं महेश्वर जी सतगुरुदेव की जय। श्री स्वामी महामंडलेश्वर अवतारपुरी जी की जय।

नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर्पदम्, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा। सद्गुरुदेव की जय। सो विदाउट गुरु कृपा, व्हेन यू गेट अ डाउट, देन यू विल हैव रेस्टलेस।

And they said, no, you are killing, but one day. फिर कहते मैं कहाँ जाऊँ मारी वो कटेगी ओ यस दैट्स व्हाई लाइफ बिकॉज वी आर द ह्यूमन वी शुड नो दैट दैट्स इट अदर्स दे नो दे हैव लर्न गॉड हैज गिवन एग्जैक्टली सो दिस वन सीड गोज इन अर्थ स्प्राउट्स इट्स कम्स अप फ्लावर्स एंड Then now very nice leaves, it will fall down, new will come again. The same thing like humans and this, everything. But more is to there. Patta tuta del se le gai pavana udai. Ab ke bichare kab mila. Pata kahan milega, kahan jayega. आज हम हैं सभी साथ में वी आर ऑल हियर एंड वी विल बी टूअर होप वी होप बट इट कैन बी दैट वन पर्सन इन अ नाइट वी विल बी नॉट एनी मोर देयर जीव पक्षी जाता है वो पक्षी पक्षी रे कहते नहीं हरि ओम प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ट्राई टू कैच हॉरिजेंट एंड हाउ टू गेट द हॉरिजेंट टुमारो आई विल टेल यू हरि ओम दीप नारायण भगवान की नाउ द बॉयज कम दे आर कमिंग द स्टूडेंट्स Oh,

0: Come a little back. Thoda. Mere papiche ho. Yeah, mere paas mein. Ab dono ek saath saath reho, beta. Aur mask nikal do. Sight karo. Slow. Thank you.
1: Shri Deepnan Bhagwan ki jai. Divishwar Mahadev ki jai.
0: Thoda dur hai.
2: Hindam Samrat Satguru Swami Madhavan ji Bhagwan ki jai.
1: श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमन स्वामी महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय.
2: विदाउट गुरु वी कैन नॉट नो ब्रह्मा विष्णु महेश. एक्चुअली गुरु इज नॉट ओनली ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु इज ऑल्सो पार ब्रह्म परमेश्वर. ओम

0: पद अनंत श्री विभूषित परिवचकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय वाह।

0: ॐ बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय श्री देवेश्वर महादेव की जय सत गुरु देव की जय
1: Vishva Guru Mahamandaleshwar Swami Maheshwarananda Ji Guru Deva Ki Jai Shri Alakpurisha Mahadeva Ki Jai

ॐ कारबिंदु संयुक्तम नित्यदायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः।

श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरी महादेव हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की। ब्लेसेड सेल्फ स्पिरिचुअल सीकर्स डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हियर एंड सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेलकम ऑल ऑफ यू आफ्टर लॉन्ग टाइम अगेन वी आर एट लीस्ट विद द वेबकास्ट टूगेदर। आई डू बिलीव यू आर ऑल वेल एंड यू आर डूइंग योर साधनास। द ब्लेसिंग्स टूडे इज कमिंग फ्रॉम द होली भारत, होली इंडिया, द सिटी ऑफ द विजडम, सेकेंड काशी इज जयपुर। वेलकम ऑल ऑफ यू। द सब्जेक्ट टूडे इज अबाउट करुणा एंड दया, विच विल बी स्पोकन बाय आवर रिस्पेक्टेड परमहंस पुष्पाजी, द लीडर ऑफ द योगा सेंटर ऑफ द जयपुर। द योगा सेंटर ऑफ द जयपुर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन एंड वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय हिज होलीनेस ब्रह्मलीन श्री स्वामी आनंदानंद जी महाराज। आई डेडिकेटेड माई रिस्पेक्ट एंड एडोरेशन पुष्पांजलि टू श्री स्वामी आनंदानंद जी महाराज, हुम आई न्यू वेरी वेल। ही वॉज वेरी काइंड। आई गिव डेडिकेटेड ऑन हिज नेम ए वन योगिक पोस्चर कॉल आनंद आसन, बिकॉज दे सेड सवासन, सवासन मरी हुई लाश, डेड बॉडी। सो मैनी पीपुल हैड ए साइकिक ट्रॉमा that you are teaching us to die. So that name is called Ananda Asan, and our respected Swamiji Anandanand ji Maharaj, he was the best friend of our Guruji and our all ones. Many of you know our respected the General of the Police of Rajasthan, who is now retired, Sri Kanayalal ji, who have been visiting our many international conferences. He is going to open this program. The concentrated subject is what I used to say always, helping hands have more values than folded hands. My dear brothers and sisters, round the world, still our neighbor country, our neighbors, our brothers, sisters of the Nepal are many still suffering. Many are died under the rocks. There is no approach. No any vehicles can go. And of course, many people are afraid to go there. If one rock moves, maybe many rocks will fall down and they are afraid. But round the world, all every countries have sent a lot of help financially, food, cloths, doctors, etc. But still there are many who have broken leg, still they are living, they can't walk. And doctor can't reach that place. India have sent the army, India have sent from the whole India the officers, the workers,

हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरुजी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है

0: एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना, जब मनुष्य वो जाता है, मरने जाता है, तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं, कि एक अच्छा कर्म परमात्मा के का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, ये किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुदेव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मैव भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत। सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है, कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो। यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं, पूज्य गुरुदेव मादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती हूँ, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की, तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मत वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाये हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा ना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य सुदिनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: कोशिश करेंगे हम भी वहाँ पे जाएं। आपने कॉल किया, ठीक है,
2: ठीक है।
1: So you

0: want me to appeal to my... Okay.
1: In America.
0: Okay.
1: To Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
0: Okay. Yoga and?
1: Daily Life Foundation, Austria or India.
0: Okay.
1: India. Yoga and Daily Life
0: Yoga
1: Foundation.
0: In?
1: Yoga in Daily Life.
0: Yoga in Daily Life.
1: Foundation.
0: In Austria.
1: No, New Delhi.
0: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that, friends, let's come together, let's help our neighbor. Let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi. And all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me and we'll find a way to get the money and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
1: In rupees?
0: Yes.
1: Thank you. Ke dollar?
0: De paise.
1: Among us, there is sitting one Brahmarishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti Vishwa Shanti Nepal ke liye. So Brahmarishi ji aaiye aap and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahmarishi P. Thawla Nagore.
2: नागौर दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोड़ में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख ईट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है। 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे, बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, शीलता नहीं है, शुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती महाधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु, महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वर जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज की,

मैं उनके सानिध्य में मेरे को मैं ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र और इतना प्रेम कि मैं महाराज श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

ती सुख सागर निज नाम नामलिया सबयो भरे आनंद हो तय पार आप सतगुरु मैं शिष्य हो आप मम प्राण आधार परमा

0: दीप नारायण भगवान अलकपुरी समादेव देवपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन भारत माता की जय।
1: विश्व गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।